मेरे कलगीधर फतेह पातशाह के दरबार में रब्बी बाणी का कीर्तन हो रहा है। संगतां बेअंत जुड़िया हैं, बाहरों आईया संगतां हजूर दे चरणा ते शीस चुका के मालिक दे दरों दाता प्राप्त करके अपने आप नूं वडभागी बना रहे हैं। पर एक निका जिहा बच्चा जिसके मन विच उत्साह है कि हे माना पहली बारी पूरे गुरु के दर्शन किए हैं, ये जरा शीस है गुरु के चरणों पर जाके रखना है। आखो श्री वाहे, सारे आखो वाहेगुरु। कलगीधर सचे पातशाह के प्रकाश उत्सव के प्यारे जुड़े हो, आओ कोई भी रसना उस अकाल पुरख के नाम तो वांझी ना रह जाए। जो भी माई भाई इतने आया है, आओ भागा वाले हो, अपनी रसना पवित्र करो, सेवक के कन सफले करो, प्यार नाल सारे गज आखो सतनाम। अजे सारे ने वाहगुरु लिखिया तो मेरा चित करता है आज खास बख्शिश वाला समय है। आज दे समय आज भी रात भागा वाली रात है, जो रब्बी नूर प्रगटिया सी इस मात लोक विच। तो आओ प्यारी सात संगत उस नूर दे दर्शन करते हुए उसके नाम नाल जुड़ो, की पता अज का जपया हो वाहगुरु सानू सदा वास्ते चेते आ जाए, साड़ी मानू यात्रा सफल हो जाए। बंदी बंदे बंदगी अख्तियार साहेब रोज भरे के प्यार मिल जाए ए दाते। आओ दाता वंडन वाला दाता आ रहा है भाई, पर पहले तैयारी कर दे करी सारे गच्ची आखो सपना। उस रसना तू मैं सदके जावा जिसने साई का नाम जपया है, ओ मुखड़ा भी धन है जिदे विचों निकलिया है सतना। निके दे बच्चे दे मन विच फुरना है।

निर्जीवड़े आप परवेश पवे जंजाले राम साचा साहेब मन मथे की फासे जमझाले राम मछली विसुनी पर नहीं लड़ी मछली आटे की गोली की लालची अपना आप खत्म कर देंदी है। हे मेरे परदेसी जीवड़िया केड़े बहना च रह रहे हैं आप भाई जोगा सिंह ने सोचिया अजे भी कोई मेनू वेख रहे है थोड़े समय के बाद हूं अमृत वेला हो गया कुसरी भाई भाई जोगा सिंह ने सोचिया मना कोई नहीं तेनू वेखदा ए तेरे अपने मन के ख्याल हैं हूं चढ़ चल चबारे भाई जोगा सिंह पौड़ियां खानी चबारे से चढ़ गया जिथे पौड़ियां खत्म हुई जिस वे इथे पहुंचया तो सामने की तकिया प्यारी संगत इधर तो भाई जोगा सिंह पौड़ियां खानी चढ़िया जाता है इधर दशमेश पिता आनंदपुरी का वाली अमृत वेले समाधि भी जुड़े हुए आखोसी भाई जी अचानक ही नेत्र खोले सिख रुड़ गया काम कुंड काम के सागर खुड़ गया कोई है पहरेदार आ गया दयालु गुरु जी हुक्म करो हजूर कहने लगे खाकी वर्दी लियाओ लियांदी रेशमी वस्त्र पहन वाला मात गुजरी का लाल पंथ का दाता अज खाकी वर्दी पा लेंगे चांदी की चौंक भी लियाओ लियांदी हजूर अंतर ध्यान होए पहुंच गए जिस वेले भाई जोगा सिंह पौड़ियां थानी उपर चढ़िया की तकिया सामने कोई सोने कद वाला हाथ भी चांदी भी चौब ते खाकी वर्दी पहन के सामने कोई सिपाही खड़ोता है आपको सिंह भाई भाई जोगा सिंह ने सोचिया मैं तो समझिया थी इस वेले कोई भी ना होगा पर एक काउं तो परसों से आ फिर सामने खड़ोते संतरी ने पहरेदार ने नेड़े होके कहा कि भाई तू कौन है अखोसरी भाई भाई जोगा सिंह बोले दूजी वेरी फिर पुछिया गर्दवी आवाज भाई जोगा सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिता तीसरी वेरी पहरेदार ने कहा भाई बोलता क्यों नहीं तू कौन है तू किधरे कलगिया वाले का सिखता नहीं आखोसरी भाई तेरी शकल वाल वेखिया मैनू गुरु याद आंदा है पर तेरी करतूत वाल वेखिया मालूम होंदा है तू कोई शैतान है आखोसरी भाई भाई जोगा सिंह ने नजर नीवी कर दी पहरेदार ने कहा तेरे चेहरे के उत्ते गुरु की मोहर लगी हुई है फिर कलगिया वाले का सिख होके तू कितने आ गया भाई जोगा सिंह का नहीं बोले हम पहरेदार मुखातों के कहना की

क्योंकि यार रो ही जाओ उतने तक जितने तक तेरे अंदर हाँ मैं पानी बन के खाथानी बाहर नहीं आ जाती रो रो के हरा फुलो जोगिया की कहीं मैं महाराज मैं भूल गया हजूर कहने लगे जोगिया भूल गए आप के पाचा हजूर कहने लगे बख्तिया खुशी भाई क्योंकि जोगा बख्शिया गया तुम्हें भी बख्शे गए आप सारे बख्शे गए प्यार आखो धन श्री गुरु गोविंद ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सूर्य चढ़ता है।

सबना होए दारू सबना होए दारू पापड़े धोए नानको खाने बेनती किन सच पर।

तिन्नी खसमत आया इना जनता कह वस किश नाही तुवे की जग तो पाया एक नानू तू मिल लै कापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे ही सच समाया।

चिंत खटोला। चिंता साड़ी मंजी है, खटोला कहते हैं मंजी। चिंता दी मंजी उते असी सब बैठे हैं, चिंतित ही दिस है सब कोई। अंतर चिंता नैनी सुखी नैन साड़े सुखे पे हैं, अखां साड़ियां कुछ लैक कर रही हैं, अखां दे विच जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है, अखां दे विच कोई लाइफ दा जूस नहीं है, ड्राई है। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरे पोख, अंदर हंगरी हैं थोड़ा है। कहंदे हैं फरीदा चिंत खटोला, जिस मंजी उते असी बैठे हां ओ चिंता दी मंजी है, वाण दुख, अते जिस वाण दे नाल ओ मंजी बुनी गई है ओ है दुख। चिंता दी मंजी वाण दुख दे वाण दे नाल बुनी है, विरह है रब दा, जो विरह है विछोड़ा है ओ है विछावन लेफ, ओ है उस दा बिस्तरा, अते उस दे उते ओढ़न वाली जो जो कुल्ट है, ओढ़ना जो है। चिंत खटोला वाण दुख विरह विछावन लेफ, इस किस्म दा जीवन है। कहंदे हन ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वे, आ साड़ी जिंदगी दी जो तस्वीर है, ए साड़ी जिंदगी दी पिक्चर है। ते आज दी जिंदगी दे विचों असी सब जो इनर पीस है, जो इनर कंफर्ट है, जो रियल कंफर्ट है, उस दी असी सारे तलाश कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने अपने इस शब्द दे विच ये दस्या है कि ऐ संतो मैनू को अजिहा सुख दसो जिस दे नाल मन दी तृष्णा बुझ जाए अते मन नू टिका आ जाए। कहंदे हन इंसान इस नू हासिल करन दे वास्ते बाकी जो कुछ भी करदा है कोशिश, उस दा जिक्र महाराज ने इस शब्द कीता है। उस दे मैं मुक्सर जिहा आप नू फिर परिचय करा दें। कहंदे हन बहु रंग माया, बहुत रंगा वाली जो माया है, मेमन ऑफ मैनी कलर्स डिसीव्स पीपल इन मैनी मैनी वेज, बहुरंग माया बहु विध पेखी, कलम कागज सियानप लेखी। कहंदे हन जिन्होंने बहुत सारियां इंजीनियस राइटिंग्स लिखियां अपने कलमां दे नाल कागजां दे उत्ते, कहंदे मैं देखिया ओ भी अंदरों अशांत हन। महर मलूक होए देखिया खान, बादशाह मलूक अते देखे हन जेड़े लोग खान बने हन, अजेहे जो लोग हन कहंदे हन मैं उन्हां नू भी देखिया है। तांते नाही मन तृप्तान असवारी, चोहा चंदन सेज सुंदर नारी, ये तमाम ऐशो इशरत दा समान जो भोगदे हन। कहंदे हन नट नाटक अखारे गया, जेड़े दिन रात पार्टीज दे विच ही रहंदे हन, जेड़े दिन रात सेलिब्रेशन दे विच ही रहंदे हन, जेड़े दिन रात एंटरटेनमेंट ही करते रहते हैं। कहते हैं उन्हें अखाड़िया दे विच भी मैं दुनिया बैठी देखी है, ता मैं मन संतोख न पाया, उत्थे भी किसी नु संतोख नहीं मिलता। अगे कहते हैं तखत सभा मंदन डोलीचे, बादशाह देखे हैं जो बड़े बड़े तख्ता होते, बहुत खूबसूरत जो दुलीचिया होते विराजमान होंगे, बहुत खूबसूरत सभावां दे विच मंडलां दे विच जो बैठते हैं, सुंदर मेवे सगल मेवे खान नू अनेका किस्म दे जो पदार्थ जिन्हां दे पास मेवे आदि हन, सुंदर बगीचे जिन्हां दे जो बगीचे दुनिया देखण नू तरसदी है। हजूर कहंदे हन अखेड़ बिरत राजन की लीला, राजियां महाराजियां दे जिन्हां दे पास शौक हन, हॉबीज हन, शिकार करना जिन्हां दा शौक है, अजियां खेडां दे विच हमेशा गलतान रहण वाले लोग भी कहंदे हन मन ना सुहेला, कहंदे हन मन ना सुहेला परपंच हीला, उना दे मन भी जो सुहेले नहीं हन। ए सारा कुछ देखने तो बाद गुरु साहब अपना जो तजर्बा दसते हन अते उपदेश दिंदे हन, कहंदे हन

अखी कुदरत अखां दे नाल कुदरत दे दीदार करो, कन्नी बाणी कन्ना दे नाल उस दे विस्माद नाद नूं श्रवण करो, मुख आखण सचनाम ते जबान तो फिर उसकी प्रशंसा करो। सो सारे सारे शब्द दी जो विचार दा सिट्टा ए निकलदा है, गुरु साहब ने कहा है अनेकां किस्म दे नाल इंसान अपने आप नूं सुखी होण दी जो कोशिश करदे हन, लेकिन सारे शब्द दी जो विचार इत्थे टिकी रही है कि किसे तरह भी मन सुहेला नहीं हुंदा। गुरु साहब फिर अगा चल के हुण दसदे हन, आओ अगली पंक्ति वल नूं वधीए कि सुहेला सुखी किस तरह हुंदा है। ओ कहंदे हन असी अपनी जिंदगी दे विच सोचदे हां कि साडे पास धन आए ते असी सुहेले हो जावांगे, सुखी हो जावांगे, लेकिन तजर्बियां तो यह पता लगता है कि साडा ए धन पदार्थ ते बहुत ज्यादा गिनती च इकट्ठा कर सकता है लेकिन सुख नहीं इकट्ठा करदा। फिर ओ केड़ा धन सानू चाहिदा जिस दे नाल असी सुख भी हासिल कर सकीए, उसका अगली पंक्ति च जिक्र करदे हन, कहंदे हन

सुहेला सिर्फ ओ है जिस दे पास हरी दा तन है, जिस दे पास आत्मा दा तन है, जिस दे पास सोल भी है। वी हैव एवरीथिंग बट वी डू नॉट हैव सोल। असी सोल मिस कर रहे हैं, सोल दे नालो टूटे हैं, सोल नु असी भुले हैं। गुरु साहब कहते हैं जिस दे पास आत्मा दा तन है ओयो सुहेल है। अते हुण तुहाडे सामने एक मैं बहुत कमाल दा प्रमाण रखन लगा हां, जिस दे विच गुरु साहब ए कहते हैं सारा संसार ही गरीब है, क्योंकि संसार दे पास आत्मा नहीं है, संसार दे पास वाहिगुरु दा तन नहीं है। तो गुरु महाराज दी जो ऑब्जर्वेशन है उस दे हिसाब दे नाल दुनिया दे विच चाहे असी कितनी भी प्रोस्पैरिटी क्यों नहीं देखिए, लेकिन महाराज दी निगाह दे विच उस रब्बी तन तो बिना गरीबी ही गरीबी छाई पई है। आओ उस प्रमाण नु सुनो। हजूर कहते हैं

तो कह देता है जगत निर्धन है, गरीब है, वाहेगुरु दे नाम तो बिना, वो वाहेगुरु वाले जीवन तो बिना इंसान गरीब ही रहिंदा है, चाहे वो कुछ भी बन जाए। जिस दे जीवन दे विच वाहेगुरु नहीं है वो गरीब है। गुरु अमरदास जी महाराज ने भी इस विचार की प्रोढ़ता की है, वो भी कहते हैं

फिर कहते हैं इत तन पै भुख लथी, जिन्हां दे पल्ले ए तन आ जांदा है अकाल पुरख वाहिगुरु दी सिफत सलाह दा, अकाल पुरख वाहिगुरु जिन्हां दे हिरदे दे विच आ जांदा है, जिन्हां दी सुरत दे विच आ जांदा है, जिन्हां दे वचनां दे विच आ जांदा है, जिन्हां दे जीवन दे विच आ जांदा है, कहिंदे हन उन्हां दे मुतलक इत तन पै भुख लथी सुख वसिया मन आए, उन्हां नूं बाहर सुख इकट्ठा नहीं करना पैंदा, सुख उन्हां दे अंदर आ जांदा है। साडा कीर्तन इत्थों शुरू होया सी एक सवाल तों कि सौ सुख मोको संत बता दो, ओ संतो ओ मैनूं सुख दसो किस तरह हासिल हुंदा है, तो उन्हां ने कहा ओ सुख तुहाडे आत्मा दे अंदर तुहाडे अपने अंदर आ जांदा है, सुख बाहर नहीं है। कंफर्ट हैज नथिंग टू डू विद एक्सटर्नल पोजेशन मटीरियल, इट इज प्योरली ए स्टेट ऑफ माइंड।

रात माया नु ही तड़पदा रहिंदा है। मन मुख जगत निर्धन है, माया नु बिन लाए बिलाट करदा है, तड़पदा है। अगे अन दिन फिरदा सदा रहे, दिन रात ये फिरदा रहिंदा है।

थोड़ा फिर इसनु मैं दोहरा दें, बहुत तत दी गल कही है। अगर असी संसार तक आ विचार पहुंचा सकिए कि गुरु अमरदास जी महाराज ने की तत कढ़िया है, सुख किस तरह मिलता है, तो साड़ी सबना दी जिंदगी दी जो अंदरली अवस्था है वो बदल सकती है। कहते हैं श्लोक महला तीजा, इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया आए, सतगुर सच दृढ़ाया। सतगुरु सानू झूठ फॉल्स फेक पैरिशेबल नालों कढ के तत दे नाल रियालिटी दे नाल जोड़ दिंदे हैं, रियालिटी दिखाल दिंदे हैं। और रियालिटी जिथे कोई गरीबी नहीं है, जिथे कोई दुख नहीं है, जिथे कोई मौत नहीं है, उस दे मतलक जिन्होंने उस रियालिटी नू पालिया हासिल किया, उन्होंने कहा ना ओ मरता ना हम डरिया, ना ओ मरता ना हम डरिया, ना ओ बिन से ना हम कड़िया, ना उस भूख ना हमको भूखे, ना उस दुख ना हमको दुख। ऐ अवस्था बनती है जिन्होंने सच नू देखिया है, तत नू देखिया है। उन्होंने मतलब ये क्या है, गुरुमुख अंतर सहज है, उन्हां दे अंदर टिकाओ ही बनिया रहिंदा है। बाहरली कोई भी टर्मोइल उन्हां दे अंदरले टिकाओ नूं जो है वो भंग नहीं कर सकती। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भुख है, हर अमृत नाम सुखवास, तिथे दुख सुख व्यापत नहीं, जिथे आत्म राम प्रगाश। गुरु साहब ओ मन दी अवस्था सानू दिंदे हन, कहंदे हन इस जग में संती तन खटिया, जिन्हां सतगुर मिलिया आए, सतगुरु सच दृढ़ाया, इस तन की कीमत कहीं न जाए, इत तन पै भुख लथी सुख वस्या मन आए, लेकिन जिना को तुर लिखिया तिनी तिनी पाया आए। बाकी साडे वर्गियां दी जो दशा है ओ ते ए क्या है, मनमुख जगत निर्धन है। मनमुखा दा जो मन दे पिछे ही चलदे हन, जेड़े नित नित खुशियां मन करे, जेड़े दिन रात मन दियां खुशियां दे पिछे पै रहंदे हन।

इस दा थोड़ा जा अर्थ समझ ले। फरीद साहब ने श्लोक उचारिया है रब दी तरफ तो, ये रब वालों श्लोक उचारिया है कि रब कह रहा है कि इंसान आप सवार है, अगर तू अपने आप नू सवार लवे मैं मिले फिर तेनू मैं मिल सकदा, मैं मिलिया सुख होए अते मेरे मिलन नाल ही तेनू सुख हो सकदा। यानी फरीद साहब ने तत ये क्या है इस दे विच के इंसान अगर तू आपे नू सवारे आपे नू समझे ते आपे नू वाहिगुरु दे नाल जोड़े ते तेनू वाहिगुरु मिल सकदा है ते वाहिगुरु नू मिलन नाल ही सुख

अखीरला श्लोक है कि समाप्त है। कबीर साहब ये कहते हैं जिस तरह असी दुख पैण उत्ते वाहिगुरु की आराधना करते हाँ, सुख दे विच भी उस दी आराधना करो ताकि तुहाड़ा सुख बनिया रहे।

0: आप क्राय करे आप हम कैसा करीब का ना निकलना जिंदगी
1: कैसे तो सब कुछ देंगे।

निषाद बदल गया ना, मालकोश का निषाद नीवा, चंद्रकोश का निषाद उपरला, इस चंद्रकोश और सूर्य कोश।

एक ताल दो ताल हुण तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हुण तीन ताल जो तब तीनों सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा रे राम जोग

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौस, चंद्र कौस, सूर्य कौस, जोग कौस, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई। जब ते सात संग में पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई। जो कब की नो सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई, सब में रव रहे प्रभु कह, देख देख नानक भिखसाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने ये तराना जेड़ा है ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, क्योंकि असली वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ। यह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी इह सानूं लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी ही नहीं। मैं कहा जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणा नमस्कार की। इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान। तो तराना श्रवण करना साहब साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तरह ने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ अंदर विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना तो

चार पंक्तियां हैं। धागुर दी धर्म दृतान धागुर दी दे मंदिरना धागुर दी धर्म दृतान धागुर दी दे मंदिरना धागुर दी ब्रिक्ते

नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, तिरना जो है यह सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार वजदा और दीन जड़ा है वचित्र वीणा वजदा, यह सागा के दर्शन कराए ने।

तो मेरा भाव कहता है कि जेडे प्रचलित शब्द ने वह तो आप पढ़ लें जेडे औखे शब्द ने वह भी रागी सिंह पढ़ने चाहिए ने। हां जी, तो रागी सिंह इधर भी ध्यान देना चाहिए, संतां नूं सरवण करना चाहिए, रागी सिंह गायन करना चाहिए। आनंद साहब जिहड़ा है वह मर्यादा किवें पढ़न दी, ऐ जोटियां दी धारना पढ़ लैने ना, यह मर्यादा नहीं। मर्यादा है राग रामकली दे विच और तीन घर दे विच पढ़ना, घर तीजा रामकली, तो उसका स्वरूप सरवण करो जिवें साहिब आप आनंद साहब पढ़ते हुंदे सी रामकली राग।